की खोज किसने करी? तो सौर प्रणाली की खोज करी थी कॉपर ने। एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। ठीक है, सौर प्रणाली की खोज करी।

0: ठीक है मामा, मैं अभी उसको यहाँ से दफा करता हूँ।
1: Shut up शेखर, don't talk nonsense।
0: कौन है?
1: मैं इससे कुछ पूछना नहीं चाहती। मैं इसके घर जा चुकी हूँ, दादी माँ से मिल चुकी हूँ और डॉक्टर अंकल रतन को अपना बेटा कहते हैं।